और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की। शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। आप सुन रहे हैं युगल गीत और अब सुनते हैं फिल्म पारसमणि का गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, अरशद भोपाली की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम था दिल ही तो है। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सितारा।

त्रिशूल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे यशोदास और लता मंगेशकर के स्वर में। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं पे संपन्न हो रहा है। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम में युगल गीत। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बानी। आज इस कार्यक्रम के साथ हैं ठाकुर चंद्र मुर्मू और डोबरो बिरोली।

0: आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
7: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु

0: क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
1: किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश कुल होते आंडो मिद वेपटा जपागर आयुनिया विषय तो मेना कीटनाशक दवा का निर्माण नीना दो चिदुक गो एतिया रेत चिली के बायो मीना विषय रे गुरा हंसदा लोते ठाकुर चंद मुर्मु तीन वेपटा जगह मेना कि मारबो आयु
4: कि फसल को चिलके हुआ कन तिया या तो चिलके कि चासे तना इन बिसेर बजे
5: आर ना दो मिनो 102 बुमनिया
4: अच्छा
5: 102 मिनो दो साबिन हो को तो काको आदा
4: काको आदा ना या
5: या अंतो ने हाइब्रिड एस पुरे को चास तना को हाइब्रिड के हाइब्रिड सम हाइब्रिड के
4: या
5: मन ओकन कंपनी रिया ओकन वैरायटी इना बु किसान को काको
4: एत काको आता
5: या काको रुमी तना तना इन नाम दो ना दो जेके देसी बीज तना इना लिंग बिडे कडे ना तमन दो सजन टका मने 102 एने इना को दो एस कुम किसान को चा चा सो
4: इन दो विशेषकर ना दो लेली बोदर रिया समस्या इन दो बोदर दो चिकन चिकन बोदर को बिन प्रयोग इतन
5: बोदर दो ना जो कर दो ने रे चुने आयार ते हेर आयार कर सी बी उतन रे
4: अच्छा चुने दो चिकन रिया बिन
5: चुने मिन दो ना ब्लॉक रे जु उतन छे
4: इया इन दो चुने चिकन रिया बिन लगाओ कडा
5: चुने दो ना दो जमीन किली मिली रेड को बोदर इतन दिको बोदर
4: दिको बोदर
5: यूरिया डाई पोटास को सल्फेट फास्फेट को ane tan red ko na ada spur enen bisela red ko ko kan red ko jika bupe cekara tan cidu ko lagi
4: iya
5: ina ko teo hasa mindo karabu
4: iya iya
5: na do hasa do kabu ja cici tan abu do
4: iya
5: nen hasa ra cikina enca so ra kle boni ba menti aku do kabu ja cici tan jangna pur si bilang kan do ko yo nang ja cok gi ya
4: iya iya
5: mande ina ko ja cok tan lagi te cunen emer do mana nak do nasa morok ya kena cie merah kena cie hada kena ina bodol ya iya deku kaji teh cie amliye miti hai ki cariye miti hai ina bodol wah
4: acha acha ina lagi abin cunar ya pariyog bin pariyog itu
5: iya endo na karaba kena hasa morok ya kena cie merah kena
4: iya
5: ina bodol ya endo anya acha subani ya time
4: bani ya time ya
5: ina cial teh gojo kaku juga hado haraba rata ini
4: abin nak fasal tayar wah abin na bawa bantere jo ᱱᱫᱚ ᱢᱤᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱛᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱤ ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱡᱚ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱨᱮᱰ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱱ ᱨᱮᱰ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱯᱟᱨᱭᱚᱜ ᱮᱛᱟᱱᱟ ᱵᱮᱱ
5: ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱥᱯᱩᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱫᱩ ᱤᱜᱤᱭᱟ
4: ᱤᱭᱟ
5: ᱱᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱨᱮᱰ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱭ ᱠᱮ ᱟᱹᱧ ᱫᱚ
4: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱨᱮᱰ ᱢᱮᱱ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱨᱮᱰ
5: ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱱᱮ ᱠᱚᱨᱡᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ
4: ᱤᱭᱟ
5: ᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱥᱚᱭᱟ ᱠᱟ
4: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ
5: ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱥᱞᱤ ᱱᱤᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ 1 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱱᱚ ᱢᱤ ᱴᱤᱯᱤ ᱵᱩ ᱢᱤᱫ ᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱠᱮ ᱠᱲᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤ
4: ᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ
5: ᱱᱤᱢ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱢ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱜᱟᱱ ᱛᱮ

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति

0: यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
1: Muchas y voy a mis hijos ni en de este de la arjo cascara mucho en la zona burrescañola en que no ha holo quite jagbandubari ar santiago a saponarte.

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान बानी, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। खूंटी में पुलिस लगातार अवैध अफीम डोडा के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।

0: इसी क्रम में खूंटी और मुरहू पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य का लगभग 2 किलो अवैध अफीम, 231 किलोग्राम डोडा, एक कार और एक बाइक जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अफीम डोडा के कारोबार की मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आज आमजनों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की और थाना प्रभारियों के साथ पैदल मार्च किया। प्रहरी पहल नाम से शुरू इस अभियान के तहत जिले में अपराध नियंत्रण तथा उद्भेदन, छेड़खानी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग रोकने और क्षेत्र में भौतिक रूप से पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा। चतरा के उपायुक्त रवि आनंद आज औचक निरीक्षण करने गिद्धौर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड तथा अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित पंजी समेत कई फाइलों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनेंगे कुछ ही पलों में सांथाली कार्यक्रम।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बोले लोग नुकन परिस्थिति रे बोले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि हम बोले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए
8: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता तमसोय भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में नहीं है या पाप में रियल तपाप में रियल वाह बेटा निका
9: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन न तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन न तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं उड़ी उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमें दुर्गम गई अंदर जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप लेते ना लेंगे सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अली आया नु तुम तेरी ना मिल आप लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6000

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय

0: ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें संबंधित बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेंगे। राज्य में प्रत्येक पात्र मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में कुल 2,64,89,777 मतदाता हैं तथा एसआईआर कार्य में 29,571 बीएलओ और 21,644 बीएलए लगाए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी सहित झारखंड में थर्ड फेज के एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी क्रम में अगले 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनमैप्ड सूची का अवलोकन जरूर कर लें। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगी और जाकर सत्यापन का काम करेंगी।
0: रांची में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधिकारिक किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और मकानों के सूचीकरण प्रक्रिया 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक मकान और परिवार का डिजिटल माध्यम से विवरण संकलित किया जाएगा। उधर जामताड़ा में भी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि चैंबर के सदस्यों के सहयोग से शिविर में आकर लोगों ने सहज ढंग से स्वगणना कार्य संपन्न किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अब ऐसे मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बजाय न्यायिक जांच के माध्यम से होगी। अदालत ने झालसा को एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश देते हुए वर्ष 2018 से 2025 के बीच हुई हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच नहीं हुई है उनमें संबंधित जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जनता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियमितीकरण ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी।
0: जमशेदपुर के सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएसआईआर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य निर्माण में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने समावेशी विकास के लिए उत्तरदायी नवाचार विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि तकनीक का विकास स्थानीय जरूरतों और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर होना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक तकनीकी प्रगति वही है जो मानव जीवन को बेहतर बनाए और पर्यावरण

0: संरक्षण में सहायक हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL को हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में CCL की CSR टीम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में कंपनी के योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। इस मौके पर उन्होंने जमानत मिलने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया।
2: हमने कहा कि सबका जय होती है और सरकार जय होकर जय रहेगा। आज हम बिल पर आए, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारा ये दिक्कत बिल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज से हम बताएं, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत का जीत होती है और होगी।
0: वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे बाइज्जत बरी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ राहत मिली है, जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। झारखंड विधानसभा के पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय माधव लाल सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो जिले के गोमिया स्थित साड़म पश्चिमी बोकारो नदी में आयोजित इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी। मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उपायुक्त अजय नाथ झा समेत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए CCL को मिला ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है, जिसे डीसी संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: जो भी देश के नागरिक SE.census.gov.in पर जाकर के अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म उसको फिल कर सकती है, और उसके बाद जो कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जितने भी एनुमरेटर्स हैं वो घर घर जाकर के गणना करेंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउस की सेंसस करेंगे। इसमें हम लोगों का जो आज का हरी झंडी दिखाने का जो उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने रथ को रवाना किया है, ये ब्लॉक में जाएगा, गाँव गाँव जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा कि जो भी प्रगणक आ रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें।
1: लोहरदगा जिला में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भाजपा द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घड़ा फोड़कर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और राज्य सरकार खामोश बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि लोहरदगा में केंद्र सरकार की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और आज आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि
3: जितना भी आप क्षेत्र देखिए, हर जगह में पानी का त्राहिमाम किए हुए जनता, पानी यहाँ डोभा का जो होता है वहाँ से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी बदतर है, आया मुंह दिखाया, बस भगदोगनी की तरह से यहाँ दिया जलाता है, टिमटिमाता है, फिर लाइट चला जाता है। लगातार विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराया हुआ है। बहुत जगह में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। आज बहुत सा ऐसा गाँव है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाया है, जिनको जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। जनता त्रस्त है। अभी स्थिति यह है, बीच में दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर में लोगों को अनाप शनाप बिल आ रहा है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जितना जल्दी हो सके जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उनको आप हटाइए।
1: लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। सिविल कोर्ट परिसर में PDJ की अध्यक्षता में जागरूकता LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म सलामी का गीत, कुमार सानू या अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे बोल को संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने इस गीत को सुनना चाहा है। महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इसरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबिया नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, रेलवे रोड गंज ढूंढवारा, मोहम्मद कलीब जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। इसी गीत को फरमाइश किया सुनने के लिए गांधी चौक रॉक पर पंजाब से हरदीप मीका, वरविंदर विरक, जतक विरक, मीका विरक। आप सभी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं फिल्म सलामी का ये खूबसूरत सा गीत।

और अब सुनते हैं फिल्म आसिकी का गीत अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चायवासा से बाबूराम, शांति देवी, रीति, कोमल, रोहन, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कली।

जख्मी भुवन प्रकाश गौतम एम फारूक शेख अब्दुल सत्तार अंसारी। इसी गीत को फरमाइश किया सुनने के लिए सहाबर टाउन कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। आप सब की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी का ये खूबसूरत सा गीत।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं पे संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम से अब राधा को दीजिए इजाज़त। पुनः

मुलाकात अगले कार्यक्रमों में, तब तक के लिए नमस्कार। और अब कुछ ही पलों में हम सुनेंगे समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम,

0: त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।

0: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
0: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव की बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच

0: पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। एसआईआर नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति पीचिंग में वार्ता और गांधीनगर में एशियाई नमस्कार।
2: Good evening. This is Akash.

0: Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Addressing the gathering after the meeting, President of China Xi Jinping stressed on fostering cooperation over confrontation, saying that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Trump responded with an equally positive tone, saying U.S.-China relations would become better than ever before. In Asian Senior Weightlifting Championships, India's Ajit Narayan delivered a remarkable performance to secure a bronze medal each in both clean and jerk and overall in the men's 71-kilogram category at Gandhinagar, Gujarat today. Competing against some of Asia's finest weightlifters, Ajit showcased exceptional strength and composure to register a total lift of 314 kg, including 174 kg effort in clean and jerk to earn India place on the podium. In the Asian Boxing Under 15 Championships, India finished with an impressive 27 medals, including 9 gold, 6 silver, and 12 bronze in Tashkent, Uzbekistan today. India topped the Under 15 girls standing with 7 gold, 2 silver, and 5 bronze medals, while the Under 15 boys contributed 2 gold, 4 silver, and 7 bronze medals. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year, BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in the men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निजाम है। इंतखाबी आम तीन इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वीडी सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को इक्तसादी मजाहिमत को बढ़ाने की तश्कील के लिए मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ताही बयान में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निजाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाजात, मुजाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही तनाजात इकतसादी गैर यकीनी की सूरत

0: अनुसार पार्टी ने आज थिरुवनंतपुरम में मुनक़िदा मीटिंग में वी डी सतीशन को अपने लीडर के तौर पर बाकायदा मुंतखब किया। बताया जाता है कि पार्टी के एक और सीनियर मीटिंग में मौजूद नहीं थे। मजीद तफसील थिरुवनंतपुरम के हमारे नामा निगार से।
1: गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें रियासत में नई सरकार तश्कील देने का अपना

होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब। बात की और एसपी विलुमनी के जेर क्यादत पेश की। साबिक वजीर आला ने गवर्नर से अपील की कि वो इस मामले को स्पीकर जे मनी के जेर क्यादत धड़े में AIADMK के 25 अराकीन कानून साज असेंबली ने टीवी के सरकार को वोट दिया, जो कि टीवी के सरकार के खिलाफ वोट न देने के ओसी मैनियन के जरिए जारी की। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से ज्यादा अफराद जान बहक हो गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर से तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज और तुंद हवा ने बड़े पैमाने पटरियों पर दरख्तों के गिरने और OHE वायर को नुकसान पहुंचने के बाइस मुख्तलिफ स्टेशनों खंभों को उखाड़ फेंका और बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी में खलल डाला। बहुत बड़ी तादाद में मकानात तबाह हो गए और बड़े बड़े फतेहपुर और वाराणसी शामिल हैं। प्रयागराज में 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि भदोही में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9 अफराद, बदायूं में 5 ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी, ये आकाशवाणी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने कशीदगी के बावजूद महाज आराई के बजाय तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामले पर तआवुन पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों लीडरों ने इत्तफाक किया कि आबनाए हुरमुज को हर के मुताबिक

0: कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, एक दूसरे इख्तलाफात से ज्यादा हमी ताल्लुकात में एक नए बाब की जरूरत को उजागर किया। अमेरिका के सदर तीन अमेरिका के कुछ बड़े कारोबारी लीडरान भी हैं, जिनमें निविदा के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक शामिल हैं। उन्होंने आज चीन को मुतनब्बे किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदर ट्रंप और सदर जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी ताइवान यूजी 2026 से मुतालिक पेपर लीक के मामले में मुबैना गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में 14 मकामात पर तलाशी की कार चान अहली गिरफ्तार किए गए तमाम पांच मुलजमीन को दिल्ली में आज एक के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पूछताछ की गरज से 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान मुहिम का आगाज खिताब करते हुए खिदमत के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर हफ्ते में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
1: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से

0: वाहन ट्रैफिक कम हो। हमने दिल्ली से आपको 7 बजे तक का किया है और इस
1: गांधीनगर में आज मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में क्लीन एंड जर्क और मजमुई खेल में अपनी काबिले जिक्र कारकर्दगी की बिना पर कांसे के 2 तमगे وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ عام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3rd مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کو ختم ہوا۔
2: کنٹری وائڈ
3: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्री वाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
4: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल 2nd वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाला है केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का EF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और ये AI-based मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डाउन

0: डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया है, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे

0: एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ERZ डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे यूपी में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इंपैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगे, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इंपैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इंफॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहां पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इंप्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इंफॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम

0: करते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म है लाइटनिंग है वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन उसको देखने चाहिए, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शीर्ष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि एक विथ एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शीर्ष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से गजलों का कार्यक्रम महफिल में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजल।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम महफिल में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चंद गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसी के साथ गजलों का कार्यक्रम महफिल अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे से, आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत के बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को। मजरू के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम शुरू के रंग में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद बख्शी के गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त के स्वर में। फिल्म का नाम है सुजाता। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह और संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है।